जीवन को दिया पवित्र प्रेमी यीशु। जब मैं निराशों में था तूने मुझे आशा दी, जगत में आया जीवन को दिया।

मुझे बचाया यीशु ने, भवित जीवन को मैं प्रभु यीशु। मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था, स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। मुझे बचाने आया यीशु जब मैं गुनाहों में थी, स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाने यीशु आया जब मैं गुनाहों में था। यस प्रभु, जब हम गुनाहों में थे प्रभु, प्रभु जब मुसीबत ने हमको घेरे हुए थे प्रभु, तब तो हमें बचाने आया तू। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया हमें सभी को बचाने के लिए।

मुझे बचाया यीशु ने, सदा में स्तुति करूंगा। अनादि का परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू। स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक। अनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू। स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने के समय तक। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा।

में सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा में स्तुति करूंगा, सदा में स्तुति करूंगा। अनंत परमेश्वर सच्चाई जीवन तू है, स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा संपूर्ण जीवन भर। अनंत परमेश्वर सच्चाई जीवन है तू, स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा संपूर्ण जीवन में, सदा में स्तुति करूंगा, सदा में सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने सदा।

स्वर्ग लोक के संसारों में अधलोक पातालों में, स्वर्ग लोक और संसारों में अधलोक पातालों में, सबसे ऊंचा सबसे प्यारा यीशु का हो नाम रे, भूत प्रेत

स्वर्ग लोक संसारों में, अधलोक और पाताल में, यीशु का नाम जय कृष्णा राज।

मरण सब जीवन पाए, यीशु के बलिदान से। सबसे ऊंचा सबसे प्यारा यीशु का हो नाम रे, सबसे ऊंचा सबसे प्यारा यीशु का हो नाम रे। स्वर्ग लोक संसारों में अधलोक पातालों में, सबसे ऊंचा सबसे प्यारा यीशु का हो नाम रे। यस प्रभु, तू सब सब कुछ है प्रभु, तेरे नाम से सब सब घबराए हुए डर डर भाग जाते, यीशु के नाम से सब

सब कुछ होता है। तेरा नाम लेने से हमारे हालात बदल जाते, तेरे नामों से प्रभु हमें चंगाई मिलती, तुझे पुकारने से हमें शांति मिलती प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस प्रभु। तू सब कुछ कर सकता है प्रभु, तेरे लिए कोई बात कठिन नहीं प्रभु। जब हम तुझे पुकारते, तू सबसे अलग है प्रभु, सबसे प्यारा है, सबसे मीठा है तू, सबसे अच्छा है प्रभु। हम मांगते प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद हालेलुया। थैंक यू जी हालेलुया। थैंक यू जी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू जीसस प्रभु। धन्यवाद प्रभु। सब तुम से ऊपर ताज दिया, सारी सृष्टि के ऊपर ऐसी जया, सारी ज्ञान हो पर तेरा ही दान से। इस प्रभु तू सबसे अलग है, सबसे प्यारा है प्रभु। तो धन्यवाद करते प्रभु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हालेलुया। थैंक यू जीसस प्रभु।

है संभव है, तुझ में यह सब कुछ संभव है, असंभव कुछ भी नहीं, असंभव असंभव कुछ भी नहीं, संभव है सब संभव है, तुझ में यह सब कुछ संभव है, असंभव तुझ में कुछ भी नहीं।

संभव है, यीशु में सब कुछ संभव है, असंभव तो कुछ भी नहीं, संभव है, तुझ में है सब कुछ संभव है, असंभव तुझ में है कुछ भी नहीं, असंभव तुझ में है कुछ भी नहीं, संभव है, असंभव तुझ में है कुछ भी नहीं, संभव है, असंभव तुझ में है कुछ भी नहीं। इस प्रभु तेरे में सब कुछ संभव है प्रभु, असंभव कुछ भी नहीं प्रभु, हम मांगते प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, थैंक यू जीसस प्रभु, हम मांगते प्रभु धन्यवाद, असंभव कुछ भी नहीं तेरे लिए प्रभु, संभव है सब कुछ प्रभु, तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में रिहाई, सब कुछ संभव है प्रभु, हम मांगते प्रभु धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा उठाते प्रभु, क्योंकि तू सारे सृष्टि का कर्ता है, तू सार, तू मुक्ति देने वाला प्रभु, शांति देने वाला परमेश्वर है, तूने सब कुछ प्रभु हमारे लिए कर दिया, यस प्रभु धन्यवाद, हम स्तुति करते, तेरी आराधना करते प्रभु, हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस।